बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ये कोई अचानक बात नहीं है। तुम इनको देख सकते हो, तुम इनको सब चीज देख सकते हो, वो कुछ भी नहीं छुप सकते हैं। कोई बात नहीं रहा जो छुप सकते हैं, कोई बात नहीं है।